0: ব্যাংকিং খাইমত বিলি চি এটিএম মোবাইল দে ইন্টারনেট ব্যাংকিং এ গোপে বিবরণ আরি খাই বিলে তুই মাধ্যম ক্যারে নিয়ে প্রে সালি জানি রি বিষয়া নিয় কল পর দিমো সময় নিয় ঠিকদিল খামো ব্যাঙ্গর বে কর্মচারী বীরা নিয় দেপ্রে বিবরণ রি বিষয়া ব্যাংক দি নীল পর দিমো নিয় তানি সতর্ক তানা ঠিকা বচেনা সিদ্ধার্থ ব্যাঙ্গর ক্যালে জনহিতরি জারি সন্দেশ
1: সিদ্ধার্থ ব্যাংক সম্বন্ধ সদাই ভরিলাই
2: तिम्रो जन्मदिन को अवसर में यह औठी उपहार तिमीलाई
3: वाओ कस्तो राम्रो डिजाइन को अनि कति चमकिलो कहाँ बनाएको नि डार्लिंग
2: अब तिम्रो लागि दिने उपहार पनि अन्त बनाएर भयो त उही हाम्रो चिर परिचित जय बुद्ध ज्वेलरी मा बनाएको नि
3: मलाई त एकदमै मन पर्यो
2: तिमी हेर्दै मात्र जाऊ न अझ हाम्रो विवाहमा त सुनको हार मंगलसूत्र सिक्री टप जन्तर चन्द्रमा छर्की तिलहरी चुरी बिन्दिया चाँदीको पाउजु अनि सबै गरगहना जय बुद्ध ज्वेलरीमा नै बनाएर ल्याउँछु नि
4: कम्प्युटर तौलमा छापावला सुनबाट बनेका आधुनिक डिजाइनका रेडिमेड तथा अर्डर अनुसारका गरगहना राशि अनुसारका पत्थर चाँदीका सामानका साथै पुराना गरगहना साटफेट तथा सुनसादी खरिद बिक्रीका लागि
5: जय बुद्ध ज्वेलरी बेसी सहर लमजुङ एलजी डिलर सँगै प्रोप्राइटर मणिलाल विश्वकर्मा फोन नम्बर 0665245375475 विश्वास तपाईँको सेवा हाम्रो
6: सूचना वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी सबै प्रकारका सूचना तथा परामर्श लिनका लागि वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी ठगीका समस्याहरूको सहजीकरणका लागि वैदेशिक रोजगार बोर्डले प्रदान गर्ने आर्थिक सहायताका पहुँच सुनिश्चित गर्न तथा वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहेको आप्रवासी स्रोत केन्द्र तथा विशिष्ट नगरपालिकामा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रमा सम्पर्क गर्नुहुन सम्पूर्ण नगरवासी तथा जिल्लावासी महानुभावहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौं।
7: सम्पर्क नम्बर आप्रवासी स्रोत केन्द्र 0665902334
6: रोजगार सेवा केन्द्र बेसी सहर 9847014549

0: तपाईको आफ्नै रेडियो रेडियो मर्चेन्डी एफएम 95 मेगाहर्ज। एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 9 बजेको छ।
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी।
2: किसान अ कम्प्लीट पाइपिंग सॉल्यूशंस

0: तो पैसे क्या घर भी आ गया दौलत।
1: कौन?
0: पता नहीं, दारू पी के गाड़ी चला रहा था, मरते मरते बची हूँ मैं।
1: फालतू है साला, मुफ्त में सुन रहा है, मत देख उसको, चल छोड़, मैनेजर देख रहा है।

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक एक बजे को छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 4 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 5 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
3: तपाईँ रेडियो मर्सेङ्गी एफएम 95

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 8 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुण ध्वज मंगलम पुनरी काश्य मंगला एकनु हरि। ल अब दुलाले दुलाले सिन्दूर हाल्ने।
1: ओ अस्मी हेर्न दुलाले लगाएको सुनको चुरा सिक्री बिन्दिया मंगलसूत्र औठी क्या राम्रो देखिएको। झन् त्यो गलामा लगाएको सुनको रानी हार त कस्तो आकर्षक है। मेरो त मनै लोभ्यो। कहाँ बनाएको होला?
2: ल आकर्षक ज्वेलर्समा बनाएको गहना आकर्षक हुँदैन त? मैले पनि मेरो हुनेवालालाई हाम्रो बिहेमा आकर्षक ज्वेलर्सबाटै गहना ल्याउनु भनेकी छु।
3: हामी कहाँ मेसिनद्वारा कटिङ गरिएका पुराना तथा आधुनिक डिजाइनका गरगहना पाइन्छ।
4: पसलको ग्यारेन्टी छाप लगाई गहना तथा बिल दिइन्छ।
3: जुनसुकै पसलमा बनेका गहना साटफेट तथा खरिद बिक्री गरिन्छ।
4: राशि अनुसारको पत्थरहरू र अन्य पत्थरहरू पाइन्छ।
3: कम्प्युटर तौलबाट खरिद बिक्री गरिनुका साथै मेसिनद्वारा नाक कान छेडिन्छ।
4: साथै सुनचादी सम्बन्धी सम्पूर्ण कामहरू गरिन्छ।
5: आकर्षक ज्वेलरी सुनचादी पसल बेसीसर नगरपालिका साथ त्रिवेणी टोल नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क सँगै। प्रोभाइडर प्रकाश विश्वकर्मा। मोबाइल 9845656233 र 9801677246।
6: आकर्षक तथा गुणस्तरीय गहना र शुद्धताको प्रतीक आकर्षक ज्वेलरी सुनचाँदी पसल।
7: अनुभवी चिकित्सक अत्याधुनिक प्रविधि गुणस्तरीय सेवा सहित अब मात्र एउटै छानामुनि सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवाका लागि सेवा मोडल हस्पिटल प्राली।
8: दुई दशक भन्दा बढी अनुभव प्राप्त एमडीसीपी कन्सल्टेन्टद्वारा 24 घण्टा आकस्मिक सेवा।
7: हप्ताको 7 दिन बहिरंग ओपीडी सेवा। 24 घण्टा ल्याब परीक्षण सेवा। 24 घण्टा अनुभवी तथा तालिम प्राप्त चिकित्सक तथा नर्सद्वारा गुणस्तरीय बिरामी भर्ना सेवा।
8: हप्ताको 7 दिन एमडीसीपी कन्सल्टेन्ट तथा सोनोलोजिस्टद्वारा भिडियो एक्सरे यूएसजी सेवा।
7: लमजुङमा नै पहिलो पटक उच्च प्रविधिको डीआर सिस्टम सहितको एक्सलेन्स डायनामिक इमेजिङ टेक्नोलोजीका साथ 500 MA हाई फ्रिक्वेन्सी डिजिटल एक्सरे सेवा।
8: फोक्सोको क्षमता तथा दम पत्ता लगाउने पीएफटी जाँच तथा परामर्श सेवा।
7: प्रत्येक दिन ईसीजी सेवा।
8: विशेषज्ञ सेवा अन्तर्गत पेट मुटु तथा छाती रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर डाक्टर मनोज श्रेष्ठद्वारा मुटुको जाँच परामर्श सेवा तथा इकोकार्डियोग्राफी।
7: वरिष्ठ छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर अच्युत पोखरेलद्वारा छाला तथा यौन रोग सम्बन्धी जाँच तथा परामर्श।
8: वरिष्ठ मधुमेह थाइरोइड तथा हर्मोन रोग विशेषज्ञ डाक्टर रमेशराज आचार्यद्वारा जाँच तथा परीक्षण।
7: जनरल फिजिसियन सेवा अन्तर्गत बाल रोग सम्बन्धी जाँच तथा परामर्श।
8: हाड जोर्नी तथा नसा रोग सम्बन्धी जाँच तथा परामर्श।
7: नाक कान तथा घाँटी सम्बन्धी जाँच तथा परामर्श।
8: गर्भवती सम्बन्धी सम्पूर्ण जाँच तथा परामर्श सेवा।
7: अन्य सेवा अन्तर्गत रेबिस टिटानस इन्फ्लुएन्जा लगायतका खोप सेवा।
8: सामान्य शल्यक्रिया तथा प्लास्टर सेवा।
7: परिवार नियोजन सेवा।
8: मनोसामाजिक परामर्श सेवा।
7: नोट घरमा नै गई होम विजिट सेवा तथा आवश्यकता अनुसार टेलिमेडिसिन टेलिनर्सिङ सेवा पनि उपलब्ध छ।
8: तपाईँको स्वास्थ्य हाम्रो प्राथमिकता। निरन्तर हजुरहरूकी सेवामा समर्पित सेवा मोडल हस्पिटल प्राली। थप जानकारीको लागि सम्पर्क 0665909999 9847729। सेवा मोडल हस्पिटल प्राली बेसी सर।

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 9 बजेको छ.
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी.